अस दर्शन होत कहूं नाहीं। तुलसी दास का कृपा हितकारी, मोहे न अचरज परत निहारी। जय राम सीता राम जय जय राम, जय राम सीता राम।

बैठेयो युगल पहर पर्यन्ता आयो दश दशदनवे कियसियहन्ता घनत देशो रहि दूरी सुपाड़ी भे

याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे भरद्वाज, यहाँ सब चरित्र मैंने कहा, अब अगले कथा मन लगाकर सुनिए। महर्षि विश्वामित्र माँ ज्ञानी मन में सिद्ध पीठ आश्रम में वास करते थे।

जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करे, परंतु मारीच और सुबाहु राक्षस से बहुत डरे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़े परे और अनेक उपद्रव करे, जिसमें मुनि

विश्वामित्र जी ने मन में चिंता हुए कि बिना नारायण के यहाँ पापी राक्षस नहीं मारेंगे। तब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि प्रभु पृथ्वी का भार दूर करने को अवतार लिया है।

0: इसी बहाने भगवान के चरणों का दर्शन करूंगी और विनती करके दोनों भाइयों को ले जाऊं।
1: And let's play this one, Fantasy to Lock and All Day, Montrose, Shaguanas, Ranoka, Sean, Baby Nathan, Ravi and the entire Brooklyn crew, the Long Island crew as well, remembering the late Mama China.

भी एक थैली एंड आई भी एक थैला, साथ हमारे चलना, पीछे पीछे आना, रुक मत जाना, दिल हॉन्ट यू।

इस दुनिया में दो तरह का कीड़ा होता है, एक वो जो कचरे से उठता है और दूसरा वो जो पाप की गंदगी से उठता है। कचरे वाला कीड़ा इंसान को बीमार कर देता है, मगर पाप की गंदगी का कीड़ा सारे समाज को

कृष्णं वन्दे भीष्मद्रोणतया च रक्तचला गाण्डाननीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेनाबेलाकुला अश्वत्थामा विकटकोटमकरा दुर्योधवर्धिनी सोत्तिरपाण्डुखलु पाण्डवैरनदर्वी कैवर्तका केशवा पाराशर्यवच सरोजमलं गीतार्थगण्डोकथं नानाज्ञानकेसरं हरिकर्ता सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनपक्षतपदैरहरः पीपीयमानमुदा भूयदबाधकपङ्कजं कर्मप्रध्वंसी न श्रीयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे।

सामगा ध्यानावष्टितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदसूरसूर्गणा देवाय तस्मै नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाव पांडवा शैव